0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।

0: है हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब और सलाम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है, भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, आज भी फिर बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है, शुभ सुबह जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए ये प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं।
1: मायूस ना हो,
0: मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS की जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो सियु का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। हमारी सभी सुनने वालों को एक बार फिर से वेलकम स्वागत किया जा रहा है जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो SBS का, और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं एक भजन जो पेश किया जा रहा है गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में। जरूर आप सुनते ही रहना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। इसी तार की नंबर पर स्टूडियो की ओर हमेशा आप तार कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं गुरमीत और मीना की आवाज में सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। एल्बम का नाम है हर हर महादेव। पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये सुंदर सा भजन।

सुंदर भजन गुरमीत और मीना की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में एक सुंदर सा भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

मोहम्मद रफी की आवाज में सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। चले प्रोग्राम में गणेंद्र जी की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है। आज की प्रोग्राम में जरूर सुनते ही रहना।

सुंदर सा भजन जगदीन्द्र जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए अबकी बार एक और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए रेडियो SBS के जरिए।

रेडियो SBS की जरिए सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आंसर उम्मीद है सुनकर और बेहद पसंद किया है। चले अब की बार मिका सुखू जी की आवाज में एक सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में आखिरी भजन पेश किया जा रहा है और आखिरी भजन होगा आरती भजन, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी जो आज नौकरी करने वाले है, काम करने वाले है, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: SBS के जरिए अति सुंदर आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, यहां तक था आज बीफे बृहस्पतिवार गुरुवार का भजन यात्रा का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Oko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Oko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis, ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman kleine en grote murti. Supermarkt.

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। चलिए फिल्म आवारापन जुजान की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। अब आप बोली चलते हैं फिल्म

के बीच की गई रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में आपके बारे गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है इतनी सी बात, इतनी सी बात गाना का बोल।

तर मित्र की आवाज में रेडियो एसबीएस की जरिए ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए

सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए अब की बार तुलसी कुमार NKK की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। तुलसी कुमार NKK प्रोग्राम में

तुलसी कुमार एन के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडी फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं कुमार सानू के आवास में गाना, और अब की बार फिल्म का नाम होगा इंडियन बाबू।

फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है सभी कामों काज के लिए। टेलीफोन नंबर है 0325656560। सोनू निगम एंड अलका।

देश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गाना

प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और घड़ी की ओर देखा जाए 9:00 प्रोग्राम में 4 मिनट व्यतीत हो चुका है। अब सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन।

सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश करने से पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। और यहां से हम आपको ले चलते हैं पहला पुरानी फिल्म का गीत की ओर, फिल्म दिल तेरा दीवाना। उसी फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में बस पेश किया जा रहा है। गाना का बोल है, मुझे कितना प्यार है तुमसे। दिल तेरा दीवाना फिल्म का नाम।

0: चल मौसम भी है वादा भी है उसकी गली का फासला थोड़ा भी है।
1: द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। इस खास पुरानी नख्मे की प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। जिंदगी से प्यार करना सीखे।

जिंदगी से प्यार करना सीख ले। आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। सिडवालू स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। मन्ना डे और लता जी की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

लता जी की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई। एक गाना तलत महमूद और लता की आवाज में पेश किया जा रहा है।

0: संग रहते हैं, एक डाली के फूल हैं हम, गुलशन में संग रहते हैं, दुश्मन से भी प्यार है, हम भी हंस कर रहते हैं, दुश्मन से भी प्यार है, हम भी हंस कर रहते हैं, हाथ प्यार का छूट नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है,
1: प्यार करा ही रुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है,
2: किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम शेड्यूल रहे हॉलैंड देश से बस ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले एक बार फिर से किशोर कुमार प्रोग्राम में साथ में होगा लता मंगेशकर।

लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। चले प्रोग्राम में मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

फूल बरसाओ मेरा महबूब जो आया है मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी के बाद द माइटी मुकेश प्रोग्राम में होगा। माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों

द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों की ख्यालों में, मुकेश जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार, द मैन विद ए फ्रीक्वेंट वॉइस, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना किशोर एनाशम, किशोर कुमार एनाशम।
1: आओ ना

चलिए प्रोग्राम में महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, छोड़कर तेरे प्यार का दामन।

पीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश जी की आवाज में एक और खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है।

इसकी एडवांस में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मुकेश के बाद मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अब हर एक सुनने वालों को खबर किया जा रहा है, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं अपना हर एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। पद्मश्री मोहम्मद रफी प्रोग्राम में

सजना, फिल्म का नाम मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी और लता की आवाज में एक और काफी खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम है आस पास, मोहम्मद रफी एंड लता प्रोग्राम में।

की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। कुछ खूबसूरत नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गए। हम आपको ले चलेंगे आपके बार किशोर एन लता जी की ओर। गाना जो पेश किया जा रहा है एड फिल्म आ गले लग जा, फिल्म का नाम है आ गले लग जा। किशोर कुमार एन लता मंगेशकर प्रोग्राम में

रेडियो वेव्स पे इसकी सर ये किशोर एन लता जी की आवाज में ये काफी प्यार भरी गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना बस सबकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिर से होगा किशोर एन लता मंगेशकर और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम आराधना। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, एक रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम जो सालों से पेश किया जा रहा है और सालों से हजारों हजारों सुनने वालों बस रोजाना रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, जो हॉलैंड देश का सबसे खूबसूरत शहर से बस सालों से पेश किया जा रहा है।

पोर्टवल की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर 03-265-65-60 है। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं और सभी कामों काज के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। कुमार सानू

गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए असरो मीठे की गाना हम सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए पेश की गए कैलाश घेर की आवाज में ये खूबसूरत गाना। तो चलिए अब की बार फिल्म लावारिस की ओर। एक फिल्म जो नई हंतीन

अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले एक बड़ी ही खूबसूरत गाना की ओर, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। फिल्म का नाम

की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई नजर फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, हम आपको ले चलते हैं अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए, और वो भी अरिजीत सिंह की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए खासतौर पर अरिजीत सिंह की आवाज में गाना भी आपने सुना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में KK एंड सुनिधि चौहान की ओर हम आपको ले चलते हैं।

uit de film No Entry. KK en Sunidhi Chauhan की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

कि एडवांस में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में सोनू निगम और अलका जी के एडवांस में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का

0: टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं।
1: दिल जो टूटा तो
0: कुमार सानू जी की आवाज में जिंदगी एक छांव फिल्म का नाम है और उसी फिल्म से ये गाना

अभी और सभी सुनने वालों की सेवा में स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11 इसी तार के नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा अवतार कर सकते हैं। कुमार सानू और अलका की आवाज में अबकी बार ये गाना, फिल्म का नाम यस बॉस।

आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना और कुमार सानू जी की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा।

खासतौर पर गाना पेश की गई शान और शरिया घोषाल की आवाज में। शान और शरिया घोषाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए शंकर महादेवन और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। कुमार सानू एंड अलका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का खास प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल।

आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले मिलकर अरिजीत सिंह की आवाज

रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज और उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू जी की आवाज में।

में श्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। चलिए और भी खूबसूरत नखमे की ओर हम आपको ले चलते हैं सुमन कल्याणपुर प्रोग्राम में।

गाना बस पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में किशोर कुमार एनाशा, किशोर कुमार एनाशा जी की आवाज में ये गाना

0: हाथ प्यार का छूट नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है।
1: प्यार करा ही रुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है।
0: Yeah.

ट्रॉफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मुकेश जी की आवाज में।

मुकेश और आशा जी की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा मीठे प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है।
0: मैं
1: आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352 65 65 60। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

लीना और लीना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म स्वर्ग नरक से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है महबूबा महबूबा फिल्म अजनबी से।

सोना नहीं चांदी नहीं यार न मिला अरे प्यार कर ले इस द फिल्म शुक मंगल सावधान एंड इस गजंग दर बप्पी लहरी आयुष्मान खुराना एंड अंदर गाँव दर फेदर मैट द फिल्म हम दिल दे चुके सिनम हम दिल दे चुके सिनम द टाइटल सॉन्ग दिस

0: bandhen hai payal ne machaya shor was uit de film Mohabbate. Het volgende liedje is ook uit de film Mohabbate en het is Aankhe khuli ho ya ho band, didar unka hota hai. Kaise kahu main o yara ye pyar kaise hota hai.
1: Ek ladki thi deewani si, ek ladke pe wo marti thi. Nazrein chuka ke, sharma ke, galiyon se guzarti thi. चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी. कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी. जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है. और मैं सिर्फ यही कह पाता था.
2: आंखें
1: जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है. और मैं सिर्फ यही कह पाता था.
2: आंखें खुली हो या

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

फिल्म अमर प्रेम से आपने सुना आरडी बर्मन और लता मंगेशकर की आवाज़ में। रहना बीत जाए शाम न आए। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, पलक मुच्छल की आवाज़ में। रजदान है गाने के बोल और फिल्म का नाम है बदनाम।

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, आपने सुना हाफ गर्लफ्रेंड से, ये एक फिल्म है अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर का। तो अब हम चलते हैं अगले गाने की ओर। रेडियो SBS FM के जरिए से आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म वो कौन थी से, लग जा गले कि फिर से ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो।

तलत अजीज की आवाज में आपने सुना डैडी से सपनों के घर के। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, जुबेन नौटियाल की आवाज में, फिल्म सनक से आप सुनिए, सुना है तेरे दिल पे मेरे, लिखा है कहीं नाम है मेरा।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

तुझ में क्या है दीवाने, खसांद और किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर kwam uit de film बड़े दिल वाले. हाउ द फेदर मेट आउट द फिल्म मलंग, हमरा इज इट लीचे.

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

हर वीक फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे। बहुत रुकी है आज तू, पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ हो बादशाह।

आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। ये बेहतरीन गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म अनपढ़ से, और अब आप सुनिए फिल्म देवदास से उदित नारायण की आवाज़ में वो चांद जैसी लड़की।

0: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, क्वाम द प्राख्तिक फिल्म धड़कन फन अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी एंड सुनील शेट्टी. Dit liedje is gezongen door Nusrat Fateh Ali Khan. Gaan we dan verder met Tequila uit de film Bala.
1: Bala bhaiya ki subah ki khushi mein pesh hai Sony Band ki khaas peshkash. Suniye.

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले।

फिल्म यादें से आपने सुना उदित नारायण और आशा भोसले की आवाज में जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले। और अब आप सुनिए 14 फेरे से है तू।

आप हमारी जान बन गए। अज़ीज़ कौर और मिथुन की आवाज़ में आपने सुना खुदा हाफिज से। अब आप सुनिए कृष्णा कोतिश से। शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ में आप सुनिए बिंदास आहा।

मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम, ये सफर कटेगा कैसे, जो अभी से डर गए तुम, बस अयोध्या फिल्म हमको दीवाना कर गए। अयोध्या फिल्म फना कोमदा खसंग दौर कैलाश खेर एंशान चांद सिफारिश जो करता हमारी।

तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मैं

अभी अभी आपने सुना केके की आवाज में फिल्म जिस्म 2 से, और अब आप सुनिए फिल्म शोर इन द सिटी से श्रेया घोषाल और तोची रैना की आवाज में साइबो।

गुलाबी स्काई फिल्म द स्काई इज पिंक से आपने सुना। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए दिल विल प्यार व्यार से। हरिहरन और अलका याचनिक की आवाज में आप सुनिए तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं।

मैंने सोचा ना हो इतना प्यार करो। दित प्रachtig liedje is gezongen door Shreya Ghoshal en kwam uit de film The Body. En हमने सुना है इस volgend liedje via Radio SBS uit de film मेरे यार की शादी है, gezongen door Udit Narayan, Alka Yachnik, Sudesh Bhosle en Jasbinder Nerula is dit liedje in het programma गीतों के लहर।

हो गुरनालो इश्क मिठा इस आर द फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एनखो सॉन्ग दोर लता मंगेशकर कॉम्ट आर द फिल्म आरजू। अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।